0: सह डिलर का रूप में माड़ी सात कीर्तनपुर स्थित कुंवर मोटरसाइकिल वर्कशॉप में विभिन्न किसिम का चार्जिंग स्कूटर साइकिल र ई रिक्शा को बिक्री शुरू भइसकेको छ। आज संपर्क गर्नुहोस्।
1: सम्पर्क कुवर मोटरसाइकल वर्कशप कीर्तनपुर, प्रोप्राइटर इन्द्रजीत कुवर, फोन 98042211343 र 98184293।

0: 50 10 40 र 98 52 0 28 40, साथै 24 घण्टा हटलाइन नम्बर 01-597-0086।
1: सम्बन्ध सधैँभरिलाई साथमै राखौँ टेकमाइललाई। टेकमाइललाई
2: स्वदेश FM 93.2 मेगाहर्ज।

0: सुदेश टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 0855 7070 53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 0855 26 440
0: It's 11 o'clock. अहिले 11 बजेको छ।

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7071 र 98 550 7073
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4395 80 र 98 550 2640
3: It's 12 o'clock. अहिले 12 बजेको छ.
4: It piping solutions.

0: हृदय टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5358 5570 761 र 0558 5570 53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब सभी रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4395 80 98 5506 4040
0: It's 1 o'clock अहिले 1 बजेको छ।

0: इस समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5359 53 98 550 77 061 र 98 550 77 53
2: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 26 440
3: It's 6 o'clock. अहिले 6 बजेको छ।

कोई का अपना बीते होलन कोई का पर भए आउने जाने चली रन्छ भन्दै मन बुझाए कोई छन आर्मी पुलिस समा

Essoys. LG le le आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range. 10 वर्ष को warranty सहित 0% no cost EMI. नागरिकता भए पुग्छ. हरेक घर को खुशी घर घर में LG. LG, life's good.

दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जडान, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: ऑफर्स, मेगा कैशबैक्स एंड गिफ्ट्स।
1: ये सात पर्व TCL घर भी चाउनो होस रपाउनो होस रु 142,500 सम्म को कैशबैक र उपहार हरु 85 र 98 इंच को टीवी मा TCL साउंड बार, फ्रिज मा सीसी इंडक्शन कुकटॉप, वॉशिंग मशीन मा 6 किलो सर्फ एक्सेल मैटिक, एसी मा फ्री इंस्टॉलेशन र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ। शर्त हरु लागू हुने छन्। ग्लोबल नंबर 1 गूगल टीवी ब्रांड TCL CG इलेक्ट्रॉनिक्स।